बियाले मान एक ना चेतस मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हाऊ जती सती नहीं पड़िया

लाग पव जल तरण कै जन्म मृथा जात रंग माया कह रहा जब तब संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच करम्मा सरन परे की राखो शर्मा जाप ताप

हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैंत जशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कारत सीखो हमारी सगल प्रजाजन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रण को बल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सपर कृपा दुष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछान घट घट के बट बट की जान जब उद कर करा कर तारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आ कर कर तो हो कब हूं तो मैं मिलत देहे तार सब हूं जेते बदन सृट सब तार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते राहत निरालम

हर हर जंदुई एक है बिब विचार कछ नाहे जल से उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाहे दोहरा जब आयस प्रभु घो भयो जन्म धरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुनाए कब बाज दोहरा ठाट पयो मैं जोर कर बचन का सिर न्याय पंथ चला तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नितुड़ते आए हैं संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुर की देह मोह कोटक विष्णु महेश कोट इंद्र ब्रह्मा गिते राव सस करो रजलेश दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत सुर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो हे कथा सुने अरगावे दुख पाप ते निकट न आवे विष्णु भगत की ए फल होई आद व्याद शब सके न कोई समत सत्रह सास पचावन हाड़ बधि प्रथम सुखदावन त्व प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा फूल भरी लो लियो सुधारा दोहरा नेत्र तुंगे चरण तार सद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बास बाद विवाद ग्रंथ सगल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जबते तुमरे

पावड़ी तिथै तू समरथ जिथै कोई नाहे उथै तेरी रख अग्नि ओदर माहे सुन के जम के दूत नाहे तेरा छड़ जाहे भाव जल बिखम सगाह गुर शब्दी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कल में एहो पुन गुण गोविंद गाहे सब सहनो कृपाल संभाले साह साह बिरथा कोई ना जाए जे आवे तो द्याए श्लोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जेवा जब गुरु नाओ नेत्री सतगुर पेखना सरवणी सुनना गुरु नाओ सतगुर से तीरथया दरगाह पाइय ठाओ कहो नान कृपा करे जिसनू ए वादे जग में उत्तम काढ़िया है विरले के ए महला पंजवा रखे रखन हारा भारियन

संजम ग्यो मूड़े एक दान तुद कुथाए लिया साई पुत्री जजमान की सा तेरी

सदकाउ सर्व सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाहु दान प्रसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मान नीवा मत उची मत पद दे राखे आव काल पुरख वाहिगुरु। अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जी ओ श्री ननकाणा साहिब। समूह गुरु धामा दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान।

बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे। श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दे आवे ताहे सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ विचार दा ध्यान तरके बोलना जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर उदास बेनती। आप जी ने कृपा रहमत कीती है। अमृत वेले तो सोहने तख्तां ते प्रकाश मनो के दर्शन दीदार बख्शे हन। आप जिया दा कोटान कोट धनवाद शुकराना है। ऐस वेले शाम दे दीवान दी संपूर्णता परंत आप जिया दे पावन स्वरूप दे सुखासन दी सेवा हुई है। सोहिला साहब दी बाणी पढ़ी गई है। बाणी पढ़द्यां सेवा करद्यां भुल चुक दी खिमा बख्शन। आप जिया दे भाणे विच दिहाड़ा सुखां नाल बतीत होया ही रहन। आप दे भाणे विच बतीत होवे कृपा करो। आप जी अपनियां सेजां ते विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्शो। अमृत वेले दे जग ने दर्शन बख्श के निहाल करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जे मार के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जे पैडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा कोना सिंजानू, हर का नाम तै नाल पछानू। जय महा भयान तप्त बहु

डराय साध जना की सरणी पराय। जिजन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रदान सा संग जाका मिटे अभिमान। आपस गौ जो जाने नीचा सऊ गनिये सबते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम दिन घट घट जीना। मन अपने ते बुरा मिटाना पेखा सगल श्रेष्ठ साजना सूख।

अंतर जामी अपनी गत में जानो आपे आपन संगा पर भराते तुमरी उस्त तुम ते होए नान कबर ना जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्मर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में ऊतम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम भला हरगा नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जा सुंदर सन बखानी

निष्कैया तो समझे पूरा कहाँ बिशन पद गावे गुंग जतन करे तापी सुर भंग कै पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हाउस गमन करतार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाय सो आवे ना चीत जो बैराई तासो प्रीत बलुआ कह ग्रह भीतर बसाए।

पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाचा पावे एक वस्त कान मिखोट गवावे एक पीना दे दस भी हैरले तो मूढ़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से हो ना।

अपनी अमान कशबा और शाल ज्ञानी मन रोस करे हे अपनी प्रतीता भी खोवे बोर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसे चौगन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक भात माया के हेत सरपल होवत जान अनेत बिरखी छाया सुरंग लाभ्यो बन से मन पछतावे जो दिसै सो चालना।

तन्न तन्न कुटाम सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजो बन धन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेखस्ता मिथ्या त्रोह मो अभिमान मिथ्या पुषु प्रकृत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जब जब जीव हर के चरण मिथ्या सरुण सरुण पर निंदा सुन है मिथ्या स्पर दर्भ को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत पार तिर रुपाद मिथ्या रसना भोजन स्वाद मिथ्या चरण पर बिकार को धावे मिथ्या मन पर लुभावे मिथ्या तन पर बुकारा मिथ्या वास लेद बेकारा बिन बुझे मिथ्या सब भय सफल ते नानक हर हर नाम लय बिरथी सागत की आरजा साज बना के हो सुचा बिरथा नाम बिना धन अंध मुखा बता के दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बेहाय मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यो कृपन के निरार धाम तन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाव नानक ताके बल बल जाओ रह तबर कशबर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु प्रवीन बाहर भेख न गाहू भीन अब्रभ देसे आप ना करे आवत जावत जन्म मरे।

जो जो कहे सो मुक्ता हुए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचर्ज कथा अष्टपदी साधक संग मुखूजल होत सा संग बाल सगली खोत साधक संग बिटे अभिमान साधक संग प्रगट सुगयान साधक संग विजय ब्रह्म नेरा सा संग सबोतन बेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक बर जतन साधकी महिमा वरने कौन परानी नानक साधक शोभा ब्रह्माय समानी साधक संग अगोचर मिलाए साधक संग सदा प्रफुलाए साधक संग आवे बस पंचा सा संग अमृत रस पुंछा सा संग होय सबकी रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतहुता वै सा संग अस्तित मन पावै साधक संग माया थे भिन्न सा संग नानक प्रभ सुप्रसन्न सा संग दुश्मन सा मीत साधु गय संग महापुनीत सा संग किस्यो नहीं बैर साधक संग ना भींगा पायर साधक संग नाही गो मंदा सा संग जाने परमानंदा साधक संग नाही हो ताप साधक संग तजे सब आप आपे जाने साध बुढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग ना कबहू तावै साधक संग सदा सुख पावै सा संग बस अगोचर लाहे साधु कै संग आ जा रुसाह साधक संग बसे थान ऊंचे साधु कै संग बहल पहुंचे साधक संग दृढ़ सतर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै गुरबान साधक संग सब कुल उदार साध संग साजर मीत कुटम नस्तार साधु कै संग सो धन पावे जिस तंथे सब गोबर सावै सा संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन सा संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्वधान गम नानक साधक संग सफल जनम साधक संग नहीं कशकाल दर्शन भेट तो होत निहाल साधक संग कलुगत हराय साधक संग नरक पर हराय साधक संग इहा उहा सुवेला सा संग बिछरत मेला जो छै सोई फल पावै साधक संग ना बिरथा जावै पार ब्रह्म साधरत बसै नानक उदराय साध सुन रसै साधक संग सुनो हर।

गाओ सत्संग हर के गुण गाओ, साधक संग ना मनते बिसराय, सत्संग सर पर निस्तराय, साधक संग लगे पर मीठा, साधु गय संग घट घट डीठा, सत्संग भया गया गारी, सत्संगत भई हमारी, साधु

कहूँ चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक जो पावक का सह सुबाह ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लगे जला ब्रह्म ज्ञानी के मनो प्रकाश जैसे तरु प्रयाकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी के नाय अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने सबते नीचा ब्रह्म ज्ञानी सेजन भये नानक जिन प्रभाव करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना तमरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सबु पर माया ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा न भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन दे मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक प्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर पुकारु माह ब्रह्म ज्ञानी का नाही तंदा ब्रह्म ज्ञान ले ताप्त बंधा ब्रह्म ज्ञानी का वह सोपला।

राष्ट्रपति, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बान भरमे उदासी, कई कोट वेद गए सुरते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कबका विचारे, कई कोट नवतन नाम ध्यावे, नानक करते गांत ना पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिगात मने कोर, कई कोट पर दर्प को हिरे, कई कोट पर दुख ना करे, कई कोट माया असर माहे, कई कोट प्रदेश प्रमाहे, जित जित लाभो ते तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रथ भोगी, कई कोट पंखी सर्व पाए, कई कोट पाथर बिरखन बजाए, कई कोट पवन पाणी बह संतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियत्र, कई कोट देव दानव इंद्र शेर शत्र, सगल समग्री अपने सूतारे, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तारा, कई कोट राजस्थाम सत, कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र, कई कोट किए रतन संबंध, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेहर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच, सब ते नेरा सब हूं ते दूर, नानका अलिप तरिया प्रभूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहु जूनी फिरे, कई कोट बैठत ही खाए, कई कोट घाले थक पाए, कई कोट किए तरमंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय भाणा तय तय राखे, नानक सब किस प्रभ के हाथे, कई कोट भय भय रागी, राम नाम संगतल निव लागी, कई कोट प्रभ को खो जनते, आत्म पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिलियो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत संग, पार ब्रह्म दिल लागा रंग, जिनको आप सुप्रसन्न, नानक तेजन सदा धन धन।

एकंकार। कई कोड की ने बाबान प्रभ ते ब्रह्मा समात ताकांतना जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोई। कई कोड पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास। कई कोड तत्के बेते सदा निहारे को नेत्रे। कई कोड नाम रस पीवे अमर पय ससादी जीवे। कई कोड नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे। अपने जन को सा सा संभारे नानक परमेश्वर के प्यारे। सरोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय। नानक दिस बलिहार नै जल थल मही अर सोए। अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस भावे सोई हो।

सो मूर खंदा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहा मुक्ति आ गए सुख पावे धर्मंता कर कर बावे त्रिन समान काश संग ना जावे बहु लश्कर मानुख पर करयास बल भीतर तक हुए विनाश सबते आप जाने बलवंत खिन में हुए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्मराय तुझ करे खुवारी गुर प्रसाद जाका मिठे अभिमान सोजन नानक दरगे परवान कोट कर्म करे उधारे शरम पावे सगले बिरथारे अनंग तपस्या करे अहंकार नर्क सोर्ग फिर फिर अवतार अनंग जतन करे आत्म नहीं द्रवय हर दरगे को कैसे गवाय आपस को जो भला कहावे तसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जागा मन होए कहो नानक दागी निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कशोए तब सुख नाही कोए जब जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे गौ बैरी मी तब लग नेह चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा दे बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस खटे लक उठता वै तृप्त न आवै माया पाछे पावै अनक भोग विख्या के करै न तृप्तावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं कहू राजे स्वप्न मनोरथ वृथे सब का जाए नाम रंग सर्व सुख हो बड़भागी किसे प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नान खर जाप करण करावन करने हास के आत कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किश किनो सपने रंग सपते दूर सब होंगे संग बुझे देखे करे विवेक आपे के आपे अनेक मरे नाम इनसे आवे ना जाए नानक सदी रया समाये आप दस समझे आप आपे रचया सबके साथ आप किनो अपने विस्तार सब काश का वो करने हार उसते पहन कहा हो किश होए थान थरंदर एका सोए अपने चलता आप करने हार गौता करे रंग आपार मन में आमन अपने माहे नानकी मत गहन न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद कने मखियानी सच सच सत सब कीना कोट मदे कने बरलै चीना भला भला भला तेरा रूप सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कटगड़ सुनी सरबन बखियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत राम जप नानक मन प्रीत सलो संत सरण जो जन पर सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपति संत के दुख न आर जा कटे संत के दुख न जब से नहीं छुटा संत के दुख न सुख सब जाए संत के दुख नरक में पाए संत के दुख न मत तोय मनीन संत का दुख न हो शोभा तेहीन संत के तय रखे न कोहे संत के दुख न थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग नंदक भी तराय संत का दुखन दे मुख पवै संतन का दुखन कागजों लवै संतन का दुखन सर्व जोन पाए संत का दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन का दुखन दृष्णा में जलय संत का दुखन सबको शलाय संत का दुखन ते सब जाए संत का दुखन नीच नी जाए संत दुखी का धाम को नाहे नानक संत भावे था लय मिलाए संत दुखी का धाम को नाहे नानक संत भावे था वे भी गत पाहे संत का दुखी माँ अतताई संत का नंदक महतताई संत का नंदक खिंडिक न पाई संत का नंदक महा त्यारा संत का नंदक परमेश्वर मारा संत का नंदक राज ते हीन संत का नंदक दुखी यार दीन संत के नंदक को सर्व रोग संत के नंदक को सदा बिजोग संत के नंदा दुख मैं दुख नानक संत भावित उसका भी हुए मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्याग गए संत का दुखी माँ अहंकारी संत का दुखी सदा भिखारी संत का दुखी जन्माय मरे संत की दुखना सुखते ठराए संत के दुखी को नाही ठाओ नानक संत भावे तलाए मिलाए संत का दुखी अद बीजते टूटाए संत का दुखी कते काज ना पहुँचाए संत के दुखी को ध्यान परमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंदर दे थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ की शनाहे अपन भी जापे खाए संत के दुखी का वरना राखन हार नानक संत भावेता लय उबाहर संत का दुखी एवं बिल लाए जल भी हूण मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे जो पावक इंद्र नहीं तरप है संत का दुखी अकेला जो बुआड़ तिल खेत माए दुहेला संत का दुखी धर्म तेरा संत का दुखी सदमिथया कहत कृत नंद का तुरी पया नानक जो तस्भावे सोई थिया संत का दुखी बिगड़ू पे जाए संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाइए संत का दुखी न मरे ना जीवाइए संत के दुखी की पूजे ना आशा संत का दुखी उठ चले निराशा संत का दुख ना दृष्टा कोय जैसा भाव है तैसा कोई होए पया कीर्तना मेटा कोय नानक जाने सच्चा सोए
ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕਿਓ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸਕੋ ਨਮਸਕਾਰ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤਿਸੇ ਧਿਆਵੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ। ਸਭ ਕੁਛ ਵਰਤਾ ਹੈ ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ, ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕਹੋ ਥੀਆ। ਬਿਨਾ ਖੇ ਲਾਭ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਦੂਸਰ ਕਾ ਉਨ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਭ ਨਾਮ ਦੇ,

जाए अष्टपदी मानु की टेक ब्रीथि सब जान देवन को एका भगवान जिसके दिया रहे अगाए बावर न दृष्णा लागे आए मारे राखे कुआ मानु कह कृष्णा ही हाथ तिसका हुकम भू सुख हुए तिसका नाम राखंड प्रोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोय उसत मन में कर निरंकार कार मन मेरे सदव्यवहार निर्मल रसनामृत पियो सदा सुला कर लय जियो नैनो पे ठाकुर का रंग सा संग मनसे सब संग चरण चलो मारो गोबिंद मिटे पाप जपिय हर बिंद कर हर करम सरवन हर कथा दरगे नानक मूह जल मथा बड़भागी ते जिन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे बिचार से तरमंत करी संसार मन तर मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानू ते सुखी एको एक एक पछाने तुत कियो सोची जाने नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिने निरंजन जान्या गुरु प्रसाद अपने आप सुजै तिसकी जानू तृष्णा बुझै साह संग हर हर जस कहत सर्वलोक त्योहार चंद्र तन दिन कीर्तन केवल बखियार

डरा जैसा सा तैसा दर्शाया, अपने कार्ज में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद था सब बुझिया, जब देखो तब सब किश मूल, नारंग सो सुखम सोई स्थूल, न कि जन्मे न किश मरे, आपन चलते आप ही करे, आपन जावन दृष्ट आन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट, आपे आप सगल में आप आन जुग द्रज थाप उप, अविनाशी नाई किश खंड, धारण धार्यो ब्रह्मंड, अलख अपे पुरख प्रताप, आप जपाए था नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उतरे धर्मंत, प्रभ के सेवक सगल उदान, प्रभ के सेवक दुख बिसार, नापे मेल लय कृपाल, गुर का शब जप है निहाल, उनकी सेवा सोई लागे सुनु, कृपा करे बटभाग, नाम जपत पामे विश्राम, नानक तन पुरख उत्तम करमान, जो किश करा सो प्रभ के रंग, सदा सदा बसे हर संग, सह सुभाय होए सोए, करने हार पछाणे सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, शिव जित समाहे समाये, वह सुख निदान उनु बने आए, आपसको आप दिनों मान, नानक प्रभ जन एक हो जान, श्लोक, सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार, जाके सिमरन उदरिया नानक तिस बलिहार, अष्टपदी, टूटी गंड नहार गोपाल, सर्व जिया बे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिसते बिरथा कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप, विनाशी प्रभ आपे आप, अपन किया कशु न होए, जैसो प्राणी लोचा कोय, तस्में नाही तेरा किश काम, गत नानक जब एक हर नाम, रूबंतो है नाही मोह है, प्रभु की जोत सगल घट सो है, तरमंता है क्या को गर्भ है, जा सब किश तिसका दिया दरबा है, अत सूरा जय कहू कहावे, प्रभु की कला बिना कहता भय, जे को होए बाहे दातार, तिस देन हार जाने गावार, जिस गुरु प्रसाद टूटे हों रोग, नानक सोजन सदा अरोग, जो मंदिर को थामे थमन, थ्यों गुरु का शब्द मने अस्थमन, जो पा खान नाव चढ़ तरह, प्राणी गुरु चरण लगत निस्तराय, जो अंधकार दीपक प्रकाश, गुरु दर्शन देख मन हुए विकास, जो माव ध्यान में मार्ग पावित, साधु संग मिल जोत प्रगटावे, तिन संतन की बाछो तूर, नानकी अर लोचा पूर, मन मूर्ख काय बिल लाइये, प्रभु लिखेगा लिखिया पाइये, दुख सुख प्रभु देवन हार, अमृत त्याग तू तसे चितार, जो कुछ करै सोई सुख मान, भूला काय फिरे अजान, कौन बस्त आई तेरा संग, लपट रहे और असलोभी पतंग, राम नाम जब हृदय माहे, नानक पद सेती कर जाहे, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, तजब मान लियो मन मोर, राम नाम हृदय में तोल, लाद के संते संचाल, वर त्याग बिख्या जंजाल, तन तन कहे सब कोए, मुख उजल हर दरगे सोए, ए वापार बिरला वापारे, नानक ताके सदबरहार, चरण साध गए तोहे तोहे, प्योर प्रसाद को अपना जियो, साध की धूर करो शनान, साध पर जाइये कुर्बान, सा सेवा मट भागी पाइये, सा संगर कीर्तन गाइये, अनक बिगनते साधु राखे, हर गुण गाया अमृत चाखे, ओट गई संते इंद्र आया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक को जी वरण हार, भुखे को देवत आधार, सर्व निधान जाकी दृष्टि बाहे, प्रभु लिखेगा लहना पाहे, सब किस तुझका वो करने जो, तिसमें दूसर हुआ ना होग, जब जन सदा सदा दिन रहनी, सबते उच्च निर्मल ए करनी, कर कृपा सिखो नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया, जाके मन गुरु की प्रतीत, तजने आवे हर प्रभु चीत, भगत भग सुनिए ते लोए, जाके हृदय एको होए, सच करनी सच ताकी रहत, सच हृदय सत मुख कहत, साची दृढ़ साचा आकार, सच बरते साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता, सलोक रूप न रेख न रंग किश, त्रिगुण ते प्रभिन्न, तिसहे बुझाए नानका, जिस सुप्रसन्न अष्टपदी, अविनाशी प्रभ मन में राग, मानु की तू प्रीत त्याग, तिस्ते परा नाई किश कोय, सर्व द्रप्तर एक को सोए, आपे भिन्ना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद, सा तेरे की चरणी पाऊ, नानक मन एहन राव, मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग, हरन भरन जाका नेत्र फोर, जिसका मंत्र न जाने होर, अंधरु मंगल सद जाके सर्व थोक सुनिए घर ताका, राज मैं राजोग मैं जोगी, तब मैं तबेसर ग्रस्त मैं भोगी, त्याए त्याए भगतें सुख पाया, नानक तिस प्रका करे अंत न पाया, जाकी लीला की मितनाए, सगल देव हारे अबगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत, समात ज्ञान ध्यान जिंदे जनदास, नाम त्यावे से ते गुरु मैं जागो, परमाए जन्म मराय, फिर आवै जाय ऊंच नीच, तिसके आसान जाए।

की तू वरमन मंग आप छोड़ बेनती करो सा संग अगन सा करत रहो हर धन के परले हो भंडार नानक पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुरु गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जागे रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर ना बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के बचन मलिक लाले रतन सुनत कमावत उधार तरे लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाग मन लागा हरंग जय जय शब्द अनाहत बाजे सुन सुन अंत करे प्रभ गाजे प्रगटे गोपाल मांद गए माथे नानक उदरे तन गए साथे सन जोग सुन सरडी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भय समरे नम्रत नाम सात संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हुए सेवक की सेवा अलजाल विकार ते रहते राम राम सुदर्शना कहते हैं कर प्रसाद दया प्रभधारी नानक निबी खेप हमारी प्रभ की उसत करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनि सहज गोविंद गुरु नाम जिस मन बसे सोत निधान सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सबते उज पाया स्थान बहुर न होवे आमन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सांत रिद नभ निध बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मध्य सगल देव दास सुंदर चतुर तत का बेता सामदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने यह निधान जपै मन कोय सब जुग मै तागी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सेमृत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतान केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन मिसराम कोट पराध सा संगठ है

निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपह गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाय रहाल अवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लख होहे ताएक न चलै नाल केव सचियारा होई है केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जिया हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है

अहंकार असंख्य जाप असंख्य पाव असंख्य पूजा असंख्य ताप ताव असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख्य जोग मन रह उदास असंख्य भगत।

कोई जा करता सिर ठीक साजे आपे जाने सोई किव करे आख किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखन सब को आखे एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का हो वै नानक जे को आप हो जाने अगै गया ना सो है।

आखे के ते कीते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नार मुंजन सेव केते आखे आखन पाहे केते कहे कहे उठ उठ जाहे एते कीते होर करेह ता आखना सक है के जे

हैं, अभीत हैं, अबाह हैं, अगाह हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं, प्रजांग प्रयाशंद। नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेहवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपहुणे, अनंगी।

ओर चादरी छंद जले है थले है अपीत है अपे है प्रभु है अजू है अदेश है अपेश है अपजांग प्रया छंद गादे बादे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नवाह तवंग निनाथे नवाह तवंग प्रवाथे नवाह तवंग अंगंजे नवाह तवंग अपंजे नवाह तवंग अकाले नवाह तवंग अपाले नमो सर्वदेश।

रिद्ध सिद्धं निवासी चर प्रशांत वह प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे खल जोगे चल भोगे चल राजे टल साजे अखर धर्मं अलाह कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं भाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भूता सर्वं जीवता सर्वं देवं सर्वं पेहवं सर्वं काले सर्वं पाले

गोपन काल जतर तत्र बिरहाज ही अब तो हूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाग कर रूप रंग न रेख आद पुरखे उदार मूर्त अजोन आद असेख देश और न पेह जाग कर रूप रेख न राग जतर तत्र दिशा विशा हुए फैले अनुराग नाम काम विहीन पेख ताम हूं न है जाह सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जान ही जेह वेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जान ही केह देव तात महात न जात जा कर जन मन विहीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुन तीन लोग चौदे के बिखै जग जाप जेह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जेह थाप परम रूप पनीत मूरत पूर्ण पुरखे अपार सर्व विश्व

पुरुखे अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूपे असूत अंगहीन अभंगनात्मेक पुरुखे अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनुपेख सर्व साहतर न जानही जेह रूप रंग अररेख परम वेद प्राण जा कह नेत पाखित नित कोड़ सिमृत प्राण साहतर नावही वह चित मद पर शांत वह प्रसाद

भजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दान चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाल है चतर चक्र काल है।

मंग जाए। न चित्र न मित्र परे है पवित्र पृथि से अदिसे अदृश्य अकृश्य बहुति शांत व प्रसाद कहते। क्या छिज देश है क्या भिज भेस है क्या गांज कर्म है क्या पांच भरम है क्या भिज लोक कह के अदित शोक है के बतूत वर्ण है के विभूत कर्ण है के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के अशोक वर्ण है के सर्वा भरण के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूप है के आ के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपह अनूप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीन है के कैधीन है के रोजी रिजा के रही मै रिहाक है के पाक व्यव है के गैबल गैब है के अफुल गुना है के सहान सा है के कारण कनिंद है के रोजी देहांत है के राज के रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गावन है के सर्वत्र पहावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है

तरुपै अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभगन त्रिभादे गंजे गादे सुभंग सर्वभागे सो सर्वानुरागे त्रिभुक्त स्वरूप है, छेद है, अछूत है, के नरकं

अन उगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है, चाचरी छंद अपांग है, अनांग है, अपेख है, लेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अपहूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, अतंद है, अबंध है, अपहित है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है,

करीमल कमाल है के जुड़ अत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मित सुबास है के अजब स्वरूप है के मित उपभूत है के

जात तहर सबे सो विचार हजार के देखे श्री भगवान भरे बिन पुहवत एक रति बिन एक न लेख सोध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सुना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर हरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री

लेहुब जाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ कर पूर्ण शुभ राता किल बुख सकल देह को हरता दुष्ट दुखण को क्षय करता। श्री अह तुज जब पै दयाला पूर्ण कर ग्रंथ तत्काला मन बांस फल पावे सोई दुख न तिसै बे आपत कोई अड़ेल।

दारु वाजे पंच शब्द तेत कारस भागे शब्द वाजे कला जितु कार तारिया पंच दूध तुद वास कीते काल कंट कुमारिया

ही बोलना। खनेह तिखी वाल हनिकी एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आव तरिया, हार वासना समानी, कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली। ज्यो तू चलाए तिव चले स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाए तिव चल है, जिन्ना मार्ग पाव है कर कृपा, जिन नाम लाए से हर

तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद श्री राजा तू जाग मह आया जन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसाद हर अनुसया पूरब लिखया पाया।

0: सर्प्रम मंगलाचर करें मनता गोविंद संग सच भोजन जोड़े मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े लगी हर नाम से ओ ए हस्ती कोड़े प्रीत लगी हर नाम से ओ ए हस्ती कोड़े राज मिलख खुशियां कणी चाय मुख न मोड़े
1: राज
0: मिलख खुशियां कणी चाय मुख न मोड़े ताडी सर्प्रम मंगणा दर्क दे न छोड़े मंगणा दर्क दे न छोड़े
1: नानक मन तन चाओ ए
0: नित प्रभु को लोड़े
1: नानक मन तन चाओ ए नित प्रभु को लोड़े धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव तू ही नरका तू सदा शांत तू ठाकुर उच्च भगवान नानक की प्रा बेन अपनी भक्ति लाए मांगो दान ठाकुर धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव सा तू ही नरका तू सदा शांत तू ठाकुर उच्च भगवान नानक की प्रा बेन अपनी भक्ति लाए मांगो दान ठाकर ना धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज कोट कोट प्रणाम बुलचक माफ तेरे चरण कमला पास बहुत बहुत धन्यवाद नानक नाम जपजी कला तेरे वाहेगुरु जी का खालसा
0: वाहेगुरु जी की फतेह
1: जो बोले सो
0: निहाल श्री अकाल
2: सतनाम श्री वाहेगुरु जी ओ तुम दाते ठाकर प्रतपालक नायक खस हमारे निमक निमक तुम ही ब्रत पालो हम मार्ग तुमरे तारे तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले रा

दया समाए शिव समाध पया तू नाही प्रभ दूर जाने सब है तू है तू नाही प्रभ दूर जाने सब तू है गुरमुख वेख हदूर अंतर भी तू है मैं दीजे नाम निवास अंतर साध हुए गुण गावे नानक दास सतगुर मत दे मैं दीजे नाम निवास अंतर सांत हुए गुण गावे नानक दास सतगुर मत दे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: सुख मनी सुखे अमृत प्रभ नाम
1: भक्त जन के मन विश्राम रहाओ
0: प्रभ के सिमरन गर्भ ना बसे
1: प्रभ के सिमरन दुख जम नसे
0: प्रभ के सिमरन काल पर हरे
1: प्रभ के सिमरन दुश्मन तरे
0: प्रभ सिमरत कछ बिगड़े।

0: जानकी मंगेर वाला
1: प्रभु को सिमरे से पर उपकारी
0: प्रभु को सिमरे तिन साध बनहारी
1: प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे
0: प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे
1: प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता
0: प्रभु को सिमरे

0: जन के ओट सतानी,
1: हर प्रताप जन अवर न जानी,
0: ओत पोत जन हर रस रते,
1: सोन समाध नाम रस माते,
0: आठ पैर जन हर हर जपे,
1: हर की भगत

0: मध्य फिरिया
1: अन कर प्रकार किए बो जतना
0: बोल दान हो मैं बो रतना
1: सिर कटाए हो मैं कर राते
0: वर्त में चले वो पाती
1: नहीं तो